मरय बिना संतोख नहीं को राजे सुमन मनोवृथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़बागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नान खर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसे दृश करे तैसा होए आपे आप आप प्रभ सोए जो गिशकिनो सो अपने रंग सबदे दूर सबों के संग बूझे देखे करे विवेक आपे कापे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक सदीरे समाय आप उपदेश समझे आपे रचया सबके साथ आप कीनो आपन विस्तार सब उसका करने हार उस ते बिन कहो किस होए थान तनंतरे के सोए अपने चलता करने हार कौ तक करे रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नान कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने बखयानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किन मिरने ची

संत के दोखी को सब त्यागे, संत का दोखी महंकारी, संत का दोखी सदा विकारी, संत का दोखी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे, संत के दोखी को नाई ठाओ, नानक संत भावे तलय मिलाए, संत का दोखी अद बीज ते टूटे, संत का दोखी कदे काज ना पहुँचे, संत के दोखी को ध्यान भरमाइए, संत का दोखी उजड़ पाइए, संत का दोखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास मना मृतक की लोथा, संत के दोखी की जड़ किस नाहे, आपन बीज आप ही खाए, संत के दोखी को रणा राखण हार, नानक संत भाए तलय उबार, संत का दोखी यूं बिरलाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजय, ज्यो पावक ईंधन निंद्रापे, संत का दोखी छुटे केला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माए दुहेला, संत का दोखी धर्म ते रहत, संत का दोखी सदमिथिया कहत, कृतन का दुर ही पया, नानक जो तस्बावे सोई थया, संत का दोखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दोखी को दरगह मिले सजाए, संत का दोखी सदा सहकाइए, संत का दोखी ना मरे ना जीवाइए, संत की दोखे की पूजा ना आसा, संत का दोखी उठ चले निराशा, संत के दोख ना तृष्टे कोय, जैसा भावे तैसा कोई होय, पया कृतना मेटे कोय, नानक जाने सच्चा सोय, सब गढ़ तिसके करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे दयावु सास गिरास, सब किस वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खिलाप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिसा अपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से सलोक, तजो सियानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय, एक आसर मन रखो, नानक दुख भरम भोजाय, अष्टपदी, मानु कीट एक वृति सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अगाय, बोरना तृष्णा लागे आए, मारे राखे को आप, मान के कृष्णा ही हाथ, तिसका हुकम बूझ सुख होए, तिसका आना कंठ पर होए, सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नारक विघ्न लागे कोय, उस्तद मन में करनंकार, करमन मेरे सद व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुवेला कर ले जियो, नैनो बेगड़ा उर्गा रंग, सा संग मन से सब संग, चरण चलो मार गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर क्रम श्रण हर कथा, हर दरगे नानक उजल मथा, बड़वागी तेंज जगमाए, सदा सदा हर के गुण गाए, राम नाम जो करे विचार, से धनवंत गनी संसार, बंदन बोले मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा

आप अष्टपदी जब आकार एकशना दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका परम चिन्ह न जापत तब हरक शोक होक से व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह काक सोवत परम आपन खेला पवर्ती जा नानक करण हार न दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी तब बंद मुकुत कहो किसको गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सहज सुपाहे तब शिव सकत कहो कित ठाए।

अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जमकी त्रास कहो किसोए। जब अभिक्त अगोचर प्रभु एका तब चित्र गुबत किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छूटे कौन बंधन बांधे। अपन आप ही अचजा नानक अपन रूप आप ही उपर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन को मान कौन अपमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय शल शिद्र लगत कहो कीस। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तय किसे पूख कवन तृप्तावै। करन करावन करने हार नानक करते का ना ही सुमार। जब अपनी शोभाया पर संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई। जय सर्व कला आप है परवीन तह वेद कतेब कहा कोचीन। जब अपन आप उतार है तो सगन अब सगन कहा विचार है। जय आपन ऊंच आपन आप नेरा तह कवन ठाकुर कवन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गर्जा नोह आप। ये अशल अशेद अभेद समाया

आए तुम ते पिन नाई किछ होए आप अनसू सब जगत परोए जाको प्रभु जिवा पुझाहे सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जे

षष्ठपदी संसंग तरुण डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल सामग्री सगल सामग्री एक घट माहे अनेक रंग नाना दृष्टाए नौ अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन संवाद अहनत तेनाद कह न जाइय चर्च विस्माद तिने देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सोझी पाए सुवंतर सो बार अनंत गड़गड़ प्या प्रया भगवंत धरन माए आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है बार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पाणी बैसंतर माहे चार कुंड दैद से समाहे तिस्ते बिन नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण स्मृत में देख ससियर सो नक्षत्र में एक बाणी प्रभ की सब को बोले आप डोल ना कबू डोले सर्व कला करखी लै खेल मोल न पाई है गुण है अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत हार रहे हो स्वामी ओतपोत गुरु प्रसाद परम का नाश नानक तिन में विशास संतना का बेकन सब ब्रह्म संजना का हृदय सब धर्म संजना सुने सुबचन सर्व व्यापी

बचन अमूली कलाल एह रतन सुनत कंबावत होत उदार आप तरे लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनहद वाजे सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल मंत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी।

विकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभुधारी, नानक निवेखे हमारी, प्रभु की स्तुति करो संत पीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सोत निधान, सर्व इच्छा दा की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब दे उच पाए स्थान, बौर न होवे आवन जान, हर दिन खाड़ चले जनस होए, नानक से प्राप्त होए, खेम शांत निध नव निध बुद ज्ञान, सर्व ते सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रकाश, सबके मत सबल ते उदास, सुंदर जदुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता, ए फल तिस जन कै मुख पने,

जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। हफ्तावारी सजे हुए सुंदर दीवाना दी सेवा, दोपहर दे लंगरां दी सेवा, सुखमणी साहब दे पाठ दी सेवा, सतगुरु जी दे दरों घरों वरसाए गुरमुख प्यारे सरदार सतनाम सिंह ते भैन जी हरिंदर कौर तथा समूह परिवार वालों की गई है और सरबत दे भले लई जातना की जा रही। सरबत दे सुख शांति सेवा सिमरण तंदुरुस्ती दियां दातां मंगियां जा रही। जिहड़ा जीव गुरु नानक दे घर विचों सेवा सिमरण तंदुरुस्ती मंगदा है, बाकी सारियां चाहना सारियां आसां सारियां ख्वाशां गुरु नानक उहदियां पूरियां करदे ने। सो सेवक परिवार की चढ़दी कला वास्ते अरदास करदे आ, बड़े प्रेम नाल बड़ी भावना नाल सवेर तों परिवार संगत की सेवा विच लगा होया। सतगुरु जी सारे परिवार दियां आसां बेनतियां प्रवान करन। अज छोटा घल्लूघारा है दिवस, दुनिया के जिस भी कोने च गुरु नानक साहब जी का सिख वसया, उहदे वल्लों समय समय अनुसार अपने पुरखियां नूं सिजदा किया जाता है, अपने पुरखियां नूं नमस्कार की जाती है। ये गल पत्थर ते लकीर है, जिहड़े लोग अपने हो गुजरिया नूं याद रखते ने, अपने वड्डियां दी कुरबानी याद रखते ने, वो लोग समय विच माण पाउंदे ने, सत्कार पाउंदे ने, नवेकला स्थान रखते ने। सिखी नवीन युग का धर्म है, इहदा फलसफा आरंभ हुंदा है नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, ते इस दी समाप्ति है जब आव की आउद निदान बणै, अत ही रण मैं तब जूझ परो। सिख है ही सिख्यार्थी दा नां, जिहड़ा सारी जिंदगी प्रभु दे गुण सिखदा रहिंदा है, ते गुरु दी सिखी हुई सिख्या तो सेहत लै के जिथे वह अपना वधिया जीवन निर्वाह करता है, उथे अपने धर्म प्रति बड़ा सुचेत है। जिथे धर्म प्रति सुचेत है उथे अपनी अणख आन नूं बरकरार रखना चाहता है, जिथे अणख आन नूं बरकरार रखना चाहता है, शान नाल जीना लोचदा है, उथे जुल्म दे खिलाफ मुढ कदीम तो लैके ये आवाज उठाउंदा आया, अज भी आवाज उठा रहा है, ते गां भी आवाज उठाउंदा रहे। ऐसियां कौमां धरती दी हिक ते बहुत घट मिलदियां ने, जिहड़ियां कौमां अणख दी गल करदियां होण, धर्म दी गल करदियां होण, स्वैमान दी गल करदियां होण। ऐसियां कौमां दी गिनती संसार दी तवारीख च बहुत घट तुहानूं पढ़न वास्ते मिले। सिखी दा वड मुला असूल, सिखी दा वड मुला सिद्धांत, जिस सिद्धांत ते दुनिया की कोई ताकत कदे किंतु नहीं कर सकती। असंभव शब्द गुरु नानक साहब दे घर विच कोई थां नहीं रखता, असंभव। जे गुरु साहबाना ने महान करनियां कीतियां, महान परोपकार कीते, सिखी दियां नीहां मजबूत होईयां, शहीदां दे सरताज दियां उपाधियां मिलियां, दुनिया दे लसानी शहीद होण दा मान मिलिया, पंथ दी सरगणा चमकौर दा युद्ध, छोटे साहबजादियां दी शहादत, बाबा बंदा सिंह बहादुर और उन्हां दे साथी सिंह, चार साल दे सरदार अजय सिंह दी शहादत, इस गल दा सिट्टा है कि सिख नूं सिख्या ही अणख नाल जीउण दी दित्ती गई है, लोकां दा भला करन दी सिख्या दित्ती गई है, समाज वातावरणी समाज ते वातावरण प्रेमी होण दा प्रण इहनूं सिखाया। जिस बंदे ने सिमरन कीता होवे, ओ किसे ते तका नहीं करदा, इस गल नूं असीं चंगी तरह जाणदे हां।

तो सत्संग जी वो मालक हर एक रंग विच मौजूद है, आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जोत सुभावे नानका साई गल चंगी। ये सब करतार दे रंग हन, उस मालक दे रंग हन, हर एक रंग ओदा ही है। तो संगत जी आओ एक शब्द आपा गायन करिए, दसम पातशाह महाराज जी का एक शब्द। बड़े दिन हो गए पढ़े नहीं बाणी, तो आओ एक शब्द आपा दसम पातशाह महाराज जी का गायन करके। दसम पातशाह महाराज जी जिन्होंने ये माछीवाड़े दे विच ऐसा आपा इतिहास विच पढ़दे हां ये बचन उच्चारण किए, ख्याल पातशाही दसवीं, वो आपा सारे रल के पढ़िए जी, जितने भी आप जी प्यार वाले बैठे हो।

कवियो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ दे मोहि बचाव हो सुखी बसै मोर परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा।

कहूँ फूल राजा हवे बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव।

कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो, ताकि ताप तनिक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शाह श्वस कैन कोई। एक बार जिन

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुभराता। किल बिख सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुज जब भये दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल। सुनै गुंग जो जाहि सुरसना पावै, सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवै। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर की रहै, हो जो या की एक बार चौ पई को कहै।

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस अधारो, जे को खावे जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो, तम संसार चरण लग तरिया।

जौ तौ प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। सूरा सो पहचानिए,

नानक जाय वाहे गुरु वाहे गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

नाम तरम प्रगट सकल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म बलियो चराग अंधियार में सब कल उतरी एक नाम तरम प्रगट सकल।

त्रम तीर गुरमत गबीर पर दुख विसारण शब्द सार हर नम सम उदार अहम एव निवारण। त्रम तीर गुरमत गबीर पर दुख विसारण शब्द सार हर सम उदार अहम एव निवारण। महादान सतगुर ज्ञान मन चाओ ना हुटै सतवंत हर नाम।

जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख सूर मोह भक सार, असंख मोन लिवलाए तार। जो तुत भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलबड़ हत्या।

0: श्री मुखवाग पातशाही दसवीं छपे चंद प्रसाद चक्कर चिन्ह बन जादर पात नंजे
1: रूप रंग रे पे को कहे न सकत के
0: अचल मूरत अनपो प्रकाश।

0: नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र
1: नमो ईशे नमो तंत्र तंत्र
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
1: अनुपे अरूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता
1: अधो
0: परम परम परमेश्वरं प्रोच पालन
1: सदा सर्वदा सिद्धाता दयालन
0: छेदी अपेदी अनामंग कामंग
1: समस्त पराजी समस्त सुदामन
0: तेरा जोर चाचरी छन जले हैं थले हैं पीत हैं अपे हैं
1: प्रभु है अजू है अदेश है अपेश है
0: जंग पर्यात छंदे अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे
1: नमो सर्व माने समस्ती निदाने
0: नमस्वंग परमाते नमस्वंग नमस्त्वं निर्नाथे नमस्त्वं प्रमाते
1: नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे
0: नमस्त्वं काले नमस्त्वं पाले
1: नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे
0: नमो राजे राजे नमो साज साजे
1: नमो साह साहे नमो महामाये
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
1: नमो लोक लोके नमो सुख सुखे
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
1: नमो सर्व जीतन नमो सर्व पीतन
0: नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं
1: नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र
0: नमो सर्व दृशं नमो सर्व कृशं
1: नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अलंगे
0: नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे
1: अकीजे अपीजे समस्तन पसीजे
0: कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी
1: सदा सर्वदा रिद्ध सिद्ध निवासी
0: चरपट चंत व प्रसाद अनवृत कर्मे अनवृत धर्मे
1: अकल जोगे अचल भोगे
0: अचल राज्य अटल साजे
1: अकल धर्मन अलग कर्मन
0: सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता
1: सर्वं पाने सर्वं माने
0: सर्वं प्राण सर्वं त्राण
1: सर्वं पुक्ता सर्वं जुक्ता
0: सर्वं देवं सर्वं बेवं
1: सर्वं काले सर्वं पाले
0: रुवाल चंद व प्रसाद आद्रूप नाथ मूर्त जोन पुरख पार
1: सर्व मंत्र मान देव पेव आदुदार
0: सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल
1: जगत विराजी अवधूत रूप रिसाल
0: नाम धाम न जात जाकर रूप रंग न रेख
1: उदार मूर्त जोन आद शेख
0: देशो न भेज जाकर रूप रेख न राग
1: जंतर तंत्र दिशा विषय हो फैले अनुराग
0: नाम काम बहीन पे कत ताम हो न जाहे
1: सर्वमान सर्वत्र मान सदै मानता है
0: एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक
1: खेल खेला खेल खेलन अंत को फिर एक
0: देव बेव न जाने जब दौर कतेब
1: रूप रंग न जात पात सो जानिए के जेब
0: तात मातना जात जाकर जन्म मरण बहीन
1: चक्कर बकर फिरे चतर चक मानिए पुरतीन
0: लोग चौदह के बिके जग जाप ईजे जाप
1: देव अनाथ मूर्त थाप्यो सबे जे थाप
0: परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार
1: सर्व विशेष रचे स्वयं गण पंजन हार
0: काल हीन कला सुजुगत काल पुरख देश
1: धर्म ताम सो परम रहत भूत लख अपेश
0: अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम
1: गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दाय काम
0: आप रूप मीक अनुसत एक पुरख अवधूत
1: गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत
0: अंगहीन पांगनातम एक पुरख पार
1: सर्व लायक सर्व कायक सर्व गोपिक पार
0: सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख
1: सर्व शास्त्र न जानिए जे रूप रंग अरेख
0: परम वेद पुराण जाके नेत पाखत नित
1: और सिमरत पुराण शास्त्र न आवे वो चित
0: मधुबार चंद त्वे प्रसाद गुणगन उदार महिमा पार
1: आसन अपंग उपमा अनंग
0: अनपो प्रकाश निजन नास
1: आजान बाहु साहन साहु

0: भुजंग पर्यात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता
1: चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
0: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती
1: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
1: चतर चक्र माने चतर चक्र दाने
0: चाचरी छंद ना सतराय ना मित्राय ना परमंग ना पितराय
1: ना।

0: के कर्म करीब है,
1: के सर्वन कली है, के सर्वन दली है,
0: के सर्वत्र वाने, के सर्वत्र दाने,
1: के सर्वत्र गौने, के सर्वत्र पौने,
0: के सर्वत्र देश, के सर्वत्र पेश,
1: के सर्वत्र राजे, के सर्वत्र साजे,
0: के सर्वत्र दीन, के सर्वत्र लीन,
1: के सर्वत्र जाहो, के सर्वत्र पाहो,
0: के सर्वत्र देश, के सर्वत्र पेश,
1: के सर्वत्र काले, के सर्वत्र पाले,
0: के सर्वत्र हंता, के सर्वत्र गंता,
1: के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी,
0: के सर्वत्र काजे, के सर्वत्र राजे,
1: के सर्वत्र सोखे, के सर्वत्र पोखे,
0: के सर्वत्र त्राणे, के सर्वत्र प्राणे,
1: के सर्वत्र देशे, के सर्वत्र पैसे,
0: के सर्वत्र माने सदैव अंग प्रधाने,
1: के सर्वत्र जापे, के सर्वत्र थापे,
0: के सर्वत्र पाने, के सर्वत्र माने,
1: के सर्वत्र इंद्रे, के सर्वत्र चंद्रे,
0: के सर्वंगली में, के परमंग फहिमे,
1: के आकल अल्लाह में, के साहेब कला में,
0: उसनल वजू है तमाम उदरजू है,
1: हमें सुलसलामे सलीखत मुदामे,
0: गरीबुल सिगल से गरीबुल परसे,
1: बिलंदल मकाने जमीनुल जमाने,
0: अमीजुल कमामे रजूवल निदाने,
1: हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है,
0: अनेकुल तरंगे अपेद है अपंग है,
1: अजीजुल निवास है गनी मुल्क राज है,
0: युक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है,
1: प्रभुत्व प्रभा है।

0: सुबंसर पागे सुसर्बानुरागे के नरकन पर नासे पृथ्वील परवासे विभुगत स्वरूप है पर जुगत अनुपे
1: सदा है विभुक्त प्रभा है
0: अनुकत स्वरूप है पर जुगत

0: अनंगन स्वरूपे अभंगन बेबूते
1: परमातन परमाते सदा सर्व साथे
0: अगाध स्वरूपे निर्बाध बेबूते
1: अनंगी अना मैं दिर्भंगी दिर्गमे
0: निपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
1: न पुत्रे न सत्रे न मित्रे
0: न ताते न माते न जाते न पाते
1: सागन सरीके मितो अमिक है
0: सदैवन प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंद पुत्र प्रसाद की जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है
1: हमें सुसलाम है समस्त कलाम है
0: के साहेब दिमाग है के हुस्नुल चिराग है।

0: कलंकन प्रणास है समस्तुल निवास है समस्तुल जुबा है के साहेब की राह है के सरबुल गवन है हमें सुल रवन है परम परम ईस है समस्तुल अदीस है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है के अचलन अपकाश है के अमितो सुबास है
1: अजब स्वरूप है के मितो विभूत है
0: के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है मधुपार चंत्र प्रसाद मुनमन प्रणाम गुण गण मुदाम अन गण प्रणाम मुन मन सलाम अनुभव अनास मुन मन प्रकाश अंचित अंग आसन अपांग जल थल अमंड दिस विश अपांड अनुभव अनास तर तुरास ओंकार आद कथनी अनाद कर कर पर नाम चित चरण नाम अंजंज गात अनरंज बात अडीठ तरम अत दीठ करम हर बोल मना चंत्र प्रसाद करनाले है हर काले है
1: कलकंडन है मैं मंडन है
0: जगदेश्वर है परमेश्वर है
1: कलकारन है सर्ववारन है
0: त्रित के तन है जग के कन है
1: मन मान्य है जग जान्य है
0: सर्वन पर है सर्वन कर है
1: सर्वासी है सर्वनासी है
0: करुणा कर है विसंबर है
1: सर्वेश्वर है जगतेश्वर है
0: ब्रह्मंड से कलखंड

0: अकलन कृत है, सर्वाकृत है, परमात्म है, सर्वात्म है, भुजंग प्रयात चंद, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद चंद्र,
1: नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्र,
0: नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे,
1: नमो वृंद वृंदे, नमो बीज बीजे,
0: नमो नमो राजन तामसन सात रूपे, नमो जोग जोगन, नमो ज्ञान ज्ञाने,
1: नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने,
0: नमो जुद जुदे, नमो ज्ञान ज्ञाने,
1: नमो भोज भोजे, नमो पान पाने,
0: नमो कले कर्ता, नमो शांत रूपे।

0: कर्मन अपर्मन अगंजे अलेखे पुजंग पर्यात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे
1: अगंजुल नामे समस्तुल निवासे
0: निकामन बेभूते समस्तुल स्वरूपे
1: कर्मन परनासी सुधर्मन बेभूते
0: सदा सच्चिदानंद सत्रन परनासी करी मुल्क निंदा समस्तुल निवासी।

0: कोटुरंग कुरंग से कुदत पौन के गुण को जात निवारे
1: पारी पुजान के पूपली बिन्यावत सीसना जात बिचारे
0: इते पै तो कहाँ पै पूपत अंत को ना गई पाए पधारे
1: जीत फिरे सदेश दिसान को बाज तोल मृदंग निगारे
0: गुंजत गुण का जान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे
1: पूत पोइक पुआन के पूपित कौन गनैनी जात बिचारे
0: श्रीपत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के।

0: जति जतार सबे सुविचार है जार की देख है।
1: श्री भगवान भजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिखा।
0: सुत से पाद दुरंत बासु सात सनादुर जान दलाएंगे।
1: पारी गुमान पर मन्ना कर पर्वत पंख लेना हलेंगे।
0: तोर रीन मरोर मुवासन माते मतंगन मान मिलाएंगे।
1: श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे।
0: नीर पार बड़े बरियार बिचारे सार की तार पचैया।
1: तोर देश मलिंद मुवासन माते का जान के मान मलैया।
0: गाड़े गड़ान को तोड़न हर सु बातें ही चक चार लवैया।
1: साहिब श्री सब को सर नायक जच कने सो एक रिवैया।
0: दानव देव ने निसाचर पूत पुइक पांच पैंगे।
1: जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब था थपेंगे।
0: तापन बाट जय तुन पापन के बो पुंज खपेंगे।
1: सात समूह पर सन फिरे जग सतर सबे अब लोक चपेंगे।
0: मानव इंद्र के जिंदन रात अब जोंत्र लोक को राज करेंगे।
1: कोट स्नान गजा दिक दान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे।
0: हम में सर बिसन सचिपत अंत फिसे।

0: पास की उपख्यान से बैठ के ऐसी ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो।
1: साच को सुन लियो सब जिन प्रेम की हो तिन ही प्र पायो।
0: काहू ले पाहन पूछ तरियो सिर काहू ले लिंगरे लटकायो।
1: काहू लखियो रवाची दिशा में काहू बचा को सी।

सेवक सिख सबे करतारा पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिया पूजो सदा हमारे बच्चा श्री सुचो करियो रक्षा दुष्टन के हंता तुम ओबरी चतुर्दशंता काल पाए कर विष्णु प्रकाश सगल काल का की।

0: राजन में आप सवारी
1: शिवकन को सिर्फ गुण सुख दियो सतरन को बल मोहबत कियो चीटी ते कुंचर असुला सब पर कृपा दुष्कर फूला
0: सुख पाए सुरंग
1: एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाना
0: जब कर तारा प्रजा तब दे पारा
1: जब आकृत करत हूँ कबू तुम मैं मिलत दे कर सब
0: जैसे बलन से सब धारे आप आपनी बुझ उचारे
1: तुम सभी ते रह निरालम जानत भेद भेद अर आलम
0: कालिब कानलम आदनी रु नाद सम
1: ताका मूड चार्ज पेदा जाको पेर न पावत बेदा
0: कर भाने मारे तमा मूर्खश पेद न जाने
1: महादेव को कैस दास निरंकार का चीनत न पिव
0: आप आपनी बुध रहती बन बिन बिन तैती
1: तुमरा लखा न जाए बसारा कैबिक सजा प्रथम संसारा
0: रूप रूप स्वरूप रंग पियो राव के गुपा
1: अंड जेर से तस्कीनी उत्पुट खान बहुरस दीनी
0: कौन सी हो संग्र कहता
1: सगरी सिस दिखाए चंबव आज जुगा स्वरूप से अंबव
0: करो सिख वारे सिख संगल
1: दूसरे उठवत उठ पाता सगल मलेश कर ओरण काता
0: शिक्षक सुनने परे तुम क्या दुष्ट को तुम रे
1: पुरख जवन पग परे ते आरे तुम के तुम संकट सब तारे
0: जो कोई बात या है ताके काल नहीं आए है
1: रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्टर है तत्काला
0: दुष्ट जाए न रो ताके ताप जन मार हो
1: वित सिद्ध कर मोह सब होई दुष्ट छाछ सके न कोई
0: एक बार जिंद में सुबारा काल

0: जो या कि एक बार चौपाई को कह चौपाई
1: समय सत्र सस्मी जय सीम की जय
0: पादृश दिशमी रविवार तीर्थ सतर्वगन सुधारा सवैया
1: जब दे गोम
0: राम रहीम पुराण कुरान ने कहे मत एक न मान्यो
1: सो बेर खेम एक न जानियो
0: श्री सुपान कृपा तुमरी कर मैं न

0: नानक सबद सुहिला सतगुरु सुनाया
1: पवित्र होए सहजना जिनी हर त्याया
0: हर त्याया पवित्र होए गुरमुख जिनी त्याया
1: पवित्र माता पिता कुटुंब सहित सो पवित्र संगत सबाई।

0: आप छठ सदारे परणे गुरबे नवर न जाने कोहे
1: कहे नानक सुनो संतोष सो शिक्षा मुख होए
0: जे को गुरुदेव मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना पावे
1: आवे मुक्त ना होता कोई कुछो भी किया जाए
0: अनेक जूनी परम आवे बिन सतगुरु मुक्त ना पाए
1: पाए लाख चरणी सतगुरु शब्द सुनाए
0: कहे नानक विचार देखो बिन

0: कवगानी सब कट के अंतर जामी
1: अलख रूप अच्छे अनपेखा राग रंग जय रूप न रेखा
0: वर्ण चैन सब हुंदे न्यारा आद पुरख अदवे अवतारा
1: वर्ण चैन जे जात न पाता सत्र मित्र जे तात न माता
0: सब ते दूर सबंदे नेरा जलदन मैयर जाए बसेरा
1: अनद रूप अनाहत बानी चरण सरण जे वस्त पवानी
0: ब्रह्मा बिसनांत नहीं पायो नेत नेत मुख चार बतायो
1: कोट इंद्र पिंद्र बनाए ब्रह्मा रुद्र उपाय खपाए
0: लोग चतर दस केलर जायो और आप ही बीच मिलायो
1: दानव दे फनंद पारा गंधर्व जच रचे सुचारा
0: उत्तम वेक भगवान गानी घट घट के पट पट की जानी
1: आत्मा जे जात न पाता एक रंग काहु नहीं राता
0: सर्व ज्योत के बीस माना सबु सर्व ठौर पहचाना
1: काल रह तन काल स्वरूपा अलख पुरख अवगत अवधूता
0: जात पात जे चेन न वरना अवगत देव अशे अनपरमा
1: सबको काल सबन को करता।

0: का चाहत हो चित में सोई कीजै।
1: शस्त्रन सो अति रण भीतर जूझ मरो तो साच पतीजै।
0: सत सहाय सदा जग माए कृपा कर श्याम हे वर दीजै।
1: सवैया दे सिवा वर मोए है शुभ कर्मन ते कभू ना डरो।
0: ना डरो अस्यों जब जाए लड़ो।

जियो पिंड सब तुम मात पिता हम बारिक कोई न जाने सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो ऐसो

तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो हो राखनहार दयाला। नानक करके गुले सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, हुए सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटी है, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांद साहो, जिस पास बैठिया सोही है,